बिंदुरुत्तर रूपं नादसंधानं संहिता संधि सर्षा गणेश विद्या गणकर्षि निच्छृद गायत्री छंदः गण

विक्रम संवत 2082 शालिवाहन शके 1948 आज मंगळवार श्रावण कृष्ण द्वादशी अर्थात 8 सप्टेंबर 2026।

महडगावाति महसूर वरद विनायकाच तित एक मंदिर मंदिर लय साध सुध जस कौलारू घर घुमटाचा कळस सोनेरी नक्षी नागाची।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतिचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं, सुनते हैं शकील बदायूनी की गीत रचना, संगीत है नौशाद और स्वर है मोहम्मद रफी।

श्रोताओं, अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

नमस्कार करावा। अथक प्रार्थना, ओम राम रेम रोम क्षाम क्षेम क्षुम कृष्ण क्षेत्रपालाय नमः। आगच्छ आगच्छ बलि, सर्व ग्रह शमनम मम कार्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं चक्रेश्वरी शंख चक्र गदा पद्मधारिणी मम वांछित सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो कमलवदन मोहिनी सर्व जन वशकारिणी साक्षात सूक्ष्म स्वरूपिणी यन्मम वशगा। ओम सूरा सूरा भवेयु स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरुणकिरणजालैरञ्जितासावकाशा विधृतजपमाला विटिकापुस्तकहस्ता इतरकरकराड्या फुल्लकालारहस्ता निवसतुरुधिबाला नित्यकल्याणशीला। या प्रार्थनेनंतर हात जोडून नमस्कार करावा। अथ शाबरी कवचजपे विनियोगः, असे म्हणून संध्येचे पळीभर पाणी तामनात सोडावे। या कवचाचा विषम संख्येत आपल्या सामर्थ्यानुसार नित्य पाठ करावा। श्री अथ शाबरी कवच पाठ प्रारंभ। ओम सर्व विघ्ननाशाय सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व सौख्य प्रदाय बालानां बुद्धि प्रदाय नाना प्रकारक धन वाहन भूमि प्रदाय मनोवांछित फल प्रदाय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम बलभद्राय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम बद्रीनारायणाय नमः। ओम दुर्गा देव्यै नमः।

ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम पुच्छनायकाय नमः, ओम नवग्रह रक्षाम कुरु कुरु नमः, ओम मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयितोषमेति, किं विक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः, कश्चित मनोहरति नाथ भवानत एहि। ओम नमः श्रीमन बलभद्र जय विजय अपराजित भद्रम भद्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व विघ्न

धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टम विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोग प्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टम हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयम कुरु कुरु व्यवहार लाभम वर्धय वर्धय रणे शत्रुम विनाशय विनाशय वीनापत्य योगम निवारय निवारय संत्युतिप्तिम कुरु कुरु पूर्णम आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युष्मदधिनम प्रत्यक्षम परोक्षम वा अजीर्णम पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन एकाहिकम द्व्याहिकम त्र्याहिकम चातुर्थिकम ज्वरम नाशय नाशय चतुरधिकान वातान अष्टादश क्षय रोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन सर्व दोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चक्रम गृहीत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हन हन परविद्यां छेदय छेदय चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय वातशूला विहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान अन्यान पि कश्चित देश काल स्थान सर्वान हन हन विषम मेघ नदी पर्वतादीन अष्टव्याधीन सर्वस्थानानि रात्रिदिन पथग चोरान वशमानय वशमानय सर्वोपद्रवान नाशय नाशय परसैन्यम विदारय विदारय परचक्रम निवारय निवारय दह दह रक्षा।

द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीम ठस्वाहा शीघ्रम अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीम ठस्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम आयुः कुरु हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाई देवे नमः शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु सती सरस्वती चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरणं मंगलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु।

नवग्रह शेष नाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनम कुरु स्वाहा। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम ज्ञानम यशो बलम नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्यया जपेत कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर् भवेत् तत्तः। अनेक विधिना भक्त्या कवच सिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः। सर्वव्याधि भयस्थाने मनसास्यतु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्वकामार्थ सिद्धये। अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियताम मम शुभम भवतु। नवनाथ सिद्ध मंत्र। ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः। शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमित स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतिचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं शकील बदायूनी की गीत रचना, संगीत है नौशाद और स्वर है मोहम्मद रफी।

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।